आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक बार एक लड़का था, नाम मान लो अर्जुन। अर्जुन नाम ठीक रहेगा। बड़ा सिंपल सा, किसी से कुछ कहता नहीं था, बस अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग थे जिनका काम ही था टांग खींचना। वो अगर सुबह दौड़ने जाता, लोग बोलते नाटक कर रहा है फिटनेस का, नया कुछ पहन लेता। कहाँ से आता है इतना एटीट्यूड, कुछ नया बोल दे तो बोलेंगे दिखावा कर रहा है। अर्जुन चुपचाप सब सुनता। एक दिन थक गया, बोला क्या करूँ, कुछ भी करूँ, लोगों को कुछ ना कुछ तो कहना है होता ही है। कि पापा मुस्कुराए और कहा, बेटा लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनके दिमाग का मुद्दा है, तुम्हारा नहीं। तू अगर हर आवाज पे रुकेगा तो मंजिल कभी नहीं आएगी। इन्हें इग्नोर कर और अपने रास्ते पर चलता रहे। और उस दिन के बाद अर्जुन ने एक चीज सीख ली, जो लोग तुम्हें गिराने की सोच रहे होते हैं ना, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कहानी छोटी थी लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। दूसरों की बातों का शोर मत करो और अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, स्क्रिप्ट भी तुम्हारी है और लिखनी भी तुम्हें है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिएगा और खुश रहिएगा। यही थी आज के किस्सों के कारवा में की कहानी, इग्नोर द पीपल।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: अक्सर हमने एक लफ्ज के बारे में सुना होगा, सेल्फ लव। कैरा रील्स में हमने देखा है या मोटिवेशनल वीडियोस में देखा है सेल्फ लव, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड।
0: सर, आपने किया है खुद से प्यार, सेल्फ लव?
1: हाँ बिल्कुल करता हूँ।
0: कब से?
1: उसके बारे में समझ आई तब से, और उसके वैल्यूज पता चले, देन आई स्टार्टेड लिविंग माय सेल्फ।
0: एग्जैक्टली, जब खुद की वैल्यू पता चलती है, उस चीज की वैल्यू पता चलती है, तो इंसान सेल्फ लव करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे सर, क्योंकि सेल्फ लव ये बहुत सुना है, लेकिन सेल्फ लव और सेल्फिश होने में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है?
1: देखो, सेल्फ लव यानी क्या है ना, कि खुद की वैल्यू करना, ठीक है। जैसे हमें फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली हमें खुद को फिट रखने के लिए हम जिस तरह से उसके लिए हम अटेम्प्ट करते हैं या हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर से खुश रहना है, मुझे फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना है, वैल्यूज भी मुझे बरकरार रखने हैं और मुझे दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना है, देन हम उसे कहते हैं कि हाँ ये सेल्फ लव है। अब सेल्फ लव में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती है कि जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना आउट ऑफ द वे जाके खुद को, यानी ट्रबल अगर हो रहा है या परेशानी हो रही है तो भी दूसरों के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट इसमें क्या होता है ना कि उनमें उससे स्ट्रेस आ सकता है, उनमें फिजिकल एग्जर्शन आ सकता है, बर्नआउट हो सकता है, तो लोगों को उसके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। तो हम लोग हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए हम कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तब उसे कहा जाता है कि सेल्फ लव। इक्वली बट हम लोग दूसरे के वैल्यूज भी रिस्पेक्ट करते हैं एंड दूसरों को भी उनकी इमोशनल और उनकी भावनाएं का भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर हम हमारे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मैं खुद के लिए कुछ चीजें करूंगा जो कि मेरे घर वाले या मेरे लिए बेनिफिशियल हो, या मेरे फिजिकली मुझे हार्म ना करे, इमोशनली हार्म ना करे, साइकोलॉजिकली हार्म ना करे, और मैं कुछ बाउंड्री सेट करूं, तो हम उसे कहते हैं कि सेल्फ लव है। सेल्फिश मींस क्या है ना, उसमें चीजें सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए ही करना, दूसरे के वैल्यूज का सम्मान नहीं करना, अगर उसे दिक्कत आ रही है मेरे से कुछ बात करने से, या मैं एक चीज इस तरह से डिसीजन दे रहा हूँ कि दूसरों को हार्म हो रहा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसे तकलीफ हो रही है दूसरों को, पर मैं मेरे ही बारे में सोच रहा हूँ, देन हम उसे कहते हैं कि देन दिस इज सेल्फिश लव। बट सेल्फ लव में इट इज नॉट देयर। सेल्फ लव में यह है कि हम खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं, हम हमारा खुद का ख्याल करते हैं, क्योंकि मैं जैसा, अगर मेरे कोई प्रिय व्यक्ति हो या मेरा कोई प्रिय फ्रेंड हो जिसके हम आदर सम्मान करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हम खुद का भी करना चाहिए, हमारे खुद के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोच, तब उसे कहा जाता है कि दिस इज सेल्फ लव।
0: तो सेल्फ लव क्या होता है ये अभी हमने जाना, तो ये सारी बातें याद रखिएगा और खुद से प्यार करते रहिएगा। ऐसे टिप्स हम हर दिन जानेंगे अपने इस शो में, तब तक स्टे ट्यून।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a

फरमाइश फरमाइश यानी फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर MGM 90.8 FM वर आरजे अदनान तुमच्या सोबत आलाय. आणि आज श्रेयस माने यांची फरमाइश आलेली आहे या गाण्यासाठी. वाह क्या बात है यार, मेरे सपनों की रानी कब आओगी. लगता है श्रेयस जी को बहुत इंतजार है अपने सपनों की रानी का. आएगी आएगी, लेकिन उसके पहले आपका ये फेवरेट गाना आपके कानों पर आने वाला है. सपनों की रानी से पहले आपका फेवरेट गाना प्ले करते हैं श्रेयस जी. आणि हो, तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर व्हाट्सअप करा 9359320080 वर 9359320080. आणि ऐकत राहा MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: जब भी कुछ अच्छा करने जाओ ना तो कुछ ना कुछ बुराई हमारे साथ आ ही जाती है। तो बात कुछ ऐसी है कि फिलहाल अपने शहर में हेलमेट कंपलसरी हो चुका है, ये हम सभी को पता होगा। म्हणजे हेलमेट सक्ती सुरू आहे, सीट बेल्ट चा वापर करणे सुद्धा सुरू आहे, आणि तुम्ही जर हे रूल्स ब्रेक केले तर तुमच्यावर कारवाई सुद्धा होती आहे आणि तुम्हाला फाईन पे करावा लागतोय। ये सब चीजें तो हम सबको पता ही होगी। तो अब आप घर से बाहर निकल रहे होगे तो हेलमेट यूज कीजिएगा, हेलमेट अपने साथ रखिए, वरना पकड़े जाओगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। हमको लगता है कि अब अपना चलान कट गया, अब हमें फाइन पे करना है, और उसके बाद डिजिटल तरीके से ना तो फाइन हमारे मोबाइल पर आता है, एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक लिंक आती है जिसमें लिखा होता है कि आपका चलान कट चुका है, चलान नंबर होता है, डेट होती है, और उसके आगे एक लिंक होती है, और ये लिंक आपने ओपन किए तो यहीं से गेम पूरा पलट जाता है। मतलब बात कुछ ऐसी है कि मौके पे चौका मारना ये साइबर फ्रॉड वाले से किसी ने सीखना चाहिए। ई चलान साइबर स्कैम अभी मार्केट में आ गया है, जो कि एक साथ अपने शहर में बहुत सारे लोगों को सेम मैसेज फॉरवर्ड हुआ और उनके साथ तो स्कैम होते होते रह गया या तो किसी के साथ हो भी गया। तो एग्जैक्टली ये साइबर स्कैम क्या है, जो कि ई चलान के नाम से आजकल अपने शहर के बहुत सारे लोग इसके शिकार हो गए हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या है भाई स्कैम, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये पिछले एक दो दिन में आपके मोबाइल पर कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज आया है क्या ई चलान वाला, चेक कीजिएगा। देखिए अभी चेक कीजिए, तब तक मैं भी लौट कर आता हूँ और बताता हूँ कि ये पूरा स्कैम क्या है और किस तरीके से हो रहा है। सो बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: हटा दो।
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ टाइम से ना तो अपने शहर में हेलमेट सक्ती झालेली आहे आणि सीट बेल्ट वापरणे सुद्धा कंपल्सरी झाले. जे हे रूल्स फॉलो करणार नाही त्यांच्यावर कारवाई होतीये आणि फाईन सुद्धा त्यांना भरावा लागतोय. आणि हा फाईन आपल्या मोबाईलवर येतो म्हणजे डिजिटली आपण हा फाईन पे करतोय. ये तो हम सभी को पता होगा. लेकिन सायबर फ्रॉड ऐसे चीजों के ऊपर नजर रखते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे शिकार मिल रहा है तो क्या करते हैं, आपको एक मैसेज सेंड करते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका ई चलान कट चुका है या आपका चलान नंबर है और उसके आगे डेट लिखी होती है और उसके आगे होती है एक वेबसाइट की लिंक और इसी के साथ आपके व्हाट्सएप पर ना तो एक .apk फाइल आती है ई चलान के नाम से. अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, अगर ऐसे कुछ मैसेज आपके पास आ रहे हो तो बच के रहिएगा और ऐसे मैसेज को अवॉइड कीजिएगा. और ये जो ई चलान वाले मैसेज आते हैं ना, उसमें आपका नाम लिखा होता है. जो ऑफिशियल मैसेज आते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से वो आपके नाम से कभी भी नहीं आते, उस पे बस आपके गाड़ी का नंबर होता है. तो ये बेसिक चीज याद रखिएगा कि कौन सा ई चलान ओरिजिनल है और कौन सा स्कैम है. और एक बात, चलान स्कैम के मैसेज आए हैं ना तो उसमें एक बात नोटिस की गई है कि सभी का चलान नंबर सेम है और ऐसा होता नहीं है ओरिजिनल चलान में. और इसी के साथ कोई एपीके फाइल है तो उसे अवॉइड कीजिए, डाउनलोड मत कीजिए गलती से भी. गलती से आपने उस पर क्लिक कर दिया तो सबसे पहले अपना डेटा ऑफ कीजिएगा और अपना UPI पिन तुरंत ब्लॉक कीजिए. इतनी बेसिक चीज आपको करना है ताकि आप ऐसे स्कैम से बच के रहे, क्योंकि मौके का फायदा ये स्कैमर उठा रहे और इस वजह से एक साथ ऐसे बहुत सारे लोगों को मैसेज अपने शहर में फॉरवर्ड हुए हैं. तो बच के रहिएगा. स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड.

0: नवीन मतदान यादी तुमचं नाव आहे का नाही हे कसं चेक करायचं माहितीये? मी सांगतोय ना, बात कुछ ऐसी है कि SIR फॉर्म तो सभी ने फिलअप किया होगा और जिन्होंने नहीं किया तो भाई घबराओ मत, आपका रह गया होगा तो 24 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है और इसके डिटेल में इंफॉर्मेशन आप आपके नगर सेवक से ले सकते हो। बैक टू टॉपिक, तो अगर जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया है और जो अभी पहली मतदान यादी आई है ना, तो उसमें आपका नाम है या नहीं ये आपको चेक करना है, तो कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके मोबाइल पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज में जाना है, यानी कि SMS ओपन कीजिए, वहाँ पर 1950 इस नंबर पर एक मैसेज सेंड करना है। वो मैसेज होगा आपका जो वोटर ID नंबर है वो उसमें ऐड करना है और वही मैसेज आपको सेंड करना है। उसके बाद सामने से रिप्लाई आएगा जिसमें नया रोल नंबर क्या है आपका और सीरियल नंबर क्या है ये आपको बताया जाएगा। अगर रिप्लाई आ गया, आपका रोल नंबर और सीरियल नंबर आ गया, तो समझ जाइएगा कि आपका नाम नए वोटर लिस्ट में आ चुका है। अगर आपका नाम नहीं आया है तो कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी या आपका एड्रेस कुछ गलत हो गया होगा या मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये सब आप करेक्ट करके ले सकते हो 24 अक्टूबर के पहले पहले। सो याद रखिएगा और प्रोसेस बहुत सिंपल है चेक करने के लिए, बस 1950 इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करना है आपका EPIC नंबर, यानी कि मतदान ओळख पत्र क्रमांक। सो लक्षात ठेवा आणि चेक करा की तुमचं नाव आहे लिस्ट मध्ये की नाही, आणि ऐकत रहा
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: TM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: स्मार्ट सिटी बसेस अपने शहर की लाइफलाइन है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट वही लाइफलाइन अगर सलाइन पर चल रही हो तो कैसा होगा भाई? तो बात कुछ ऐसी है जनाब कि एक रिपोर्ट में ऐसा आया है, अपने शहर में तकरीबन 100 स्मार्ट सिटी बसेस है और जिसमें से 30% स्मार्ट सिटी बसेस बंद है, यानी कि उनका मेंटेनेंस वक्त पर हुआ नहीं और बचे कुचे बस के जरिए पूरे शहर की लाइफलाइन चल रही है। अब देखो, बात ये आती है कि यार हमारे पास, हम सब कुछ स्मार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस करना ये दूर दूर तो कहीं दिखाई नहीं देता। और तकरीबन हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा इनकम ये स्मार्ट सिटी बसेस करती है और इससे ज्यादा खर्चा इसके मेंटेनेंस के लिए लग रहा है। अब अपने शहर में सुना है इलेक्ट्रिक बसेस भी आने वाली, 35 बसेस शहर में आने वाली, तो एक ही दरख्वास्त है प्रशासन से, भाई जो बसेस नहीं आ रही है ना तो उनका तो भी वक्त पर मेंटेनेंस किया करो, वरना नई नवीली दुल्हन जैसे 99 दिवस तुम्हें करताल आणि त्यानंतर परिस्थिति जैसे थे हो जाएगी और उसके बाद जो नई चीजें है वो भी 1 साल के बाद पुरानी हमें नजर आएगी। हालांकि इतनी जल्दी पुरानी नहीं होनी चाहिए, बट जिस तरीके से आप इसका ख्याल रखते हो तो होने तो वाला ही ऐसा लग रहा है। बिकॉज इतनी अच्छे स्मार्ट सिटी बसेस है अपने शहर में, हमने भी अगर देखा होगा ना तो समझ में आता है भाई क्या हाल हो गया इनका, सब खट खट खटारा हो चुके हैं। पर करे तो करे क्या, स्मार्ट सिटी बस कागज पर हमें नहीं बनानी है, असल मायने में हमें अपना शहर स्मार्ट बनाना है। देखते हैं कब तक ये मेंटेनेंस का काम कम्प्लीट होगा और सारे बसेस हमें शहर के रास्तों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट

0: लाइफ पार्टनर चाहिए या रियल पार्टनर, यही समझ में नहीं आ रहा आजकल तो। बात कुछ ऐसी है कि लग्नाच्या जाहिराती आपण बघितल्या असतील, मुलगा किंवा मुलगी सुंदर सुशिक्षित संस्कारी पाहिजे असं आपण अनेकदा ऐकलं होतं। आता एक नवीन रिक्वायरमेंट आली आहे की नवरा कसा पाहिजे, सोबत रील बनवणारा आणि एडिट करून देणारा। क्या बात है यार, मतलब इन्फ्लुएन्सर को तो इन्फ्लुएन्सरी चाहिए भाई। आणि आता काळ बदलतोय, त्यामुळं पूर्वी मुलगी म्हणायची की माझा नवरा मला समजून घेणारा हवा, आता म्हणते की माझा नवरा कॉन्टेंटला समजून घेणारा असावा। क्या बात है यार, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर ही चूज कर रहे हो। म्हणजे लग्न झाल्यावर नवरा म्हणणार चल आज कुठे फिरायला जाऊया, आणि बायको म्हणणार फिरायला नंतर जाऊ, आधी 3 रील शूट करू आणि फिरण्याची प्लॅनिंग तयार करू, त्याचा व्लॉग तयार करू। सो ये एक ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट व्हायरल हो रहा था जिसमें ये सब बातें आई थी कि एक लड़की है जिसको नवरोबा पाहिजे तो रील बनवणारा आणि एडिट करून देणारा पाहिजे। क्या बात है यार, एक वक्त था जब लड़की के पास जमीन जायदाद घर बैंक बैलेंस नौकरी ये सब देखा जाता था। आप क्या देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए और उसको एडिटिंग आनी चाहिए। खैर अगर ऐसा है तो भाई इस जन्म में तो मेरे जैसे लड़के सिंगल ही मरने वाले। खैर क्या ही बोले, वैसे आपका कोई दोस्त होगा जो रील बनाता है या एडिट करता है तो उस तक ही आप रिश्ता पहुंचा सकते हो, क्या पता उसका भला हो जाए। खैर अपना क्या, सिंगलपन जिंदाबाद। स्टे ट्यून
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

खुशी क्या होती है पता है बचपन की, जब हम सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे, नहा धोकर 7 बजे स्कूल चले जाते थे और स्कूल जाने के बाद पता चलता था कि स्कूल की छुट्टी है आज, किसी वजह से आज स्कूल बंद रहेगा, तो यार वो जो खुशी होती थी ना चेहरे पर, भागते भागते वापस घर आना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आज तो छुट्टी है स्कूल की, और उसके बाद मम्मी ने जो बनाया हुआ टिफिन था ना, वही टिफिन ना कार्टून देखते देखते खाना, उसमें जो खुशी थी ना, वो खुशी आज के बच्चे ना तो एकदम मिस करेगी यार, वो खुशी वो आज के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आज तो यार स्कूल अगर बंद है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, क्योंकि यार जो 90s के किड्स हैं ना, तो ये खुशी का मजा उन्होंने लिया है, मैंने तो लिया है, और मुझे तो इतनी खुशी होती थी, आय हाय हाय, जैसे मैं घर पर आया ना तो एकदम चिल्लाता था कि मम्मी आज तो छुट्टी है यार। वैसे यार वो खुशी बचपन वाली जिंदगी में वापस कभी नहीं आती है। तो 90s के किड्स याद आ गए ना आपको भी आपके बचपन की, आपके स्कूल की, और भी ऐसी ना तो 90s की बातें जानने के लिए, अपने 90s के दौर में जाने के लिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ संडे स्पेशल शो 90s वाला शो सुनना ना भूले, सुबह ठीक 9 से संडे के दिन। सो वहां पर बस हम 90s की बातें करते हैं, कोशिश करूंगा कि मेरी बातों से ना तो आपको 90s के एक दौर में लेकर जाने की। तो भूलना मत 90s वाला शो सुनने संडे सुबह 9 बजे, और फिलहाल मेरे साथ सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 937171 4265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो MGM यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है

0: आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है तो बात।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष hospital, अदालत road signal, विवेकानंद college road, सतीश motor के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल संत तुकाराम नाट्यगृह रोड फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस सिडको एन फाइव छत्रपति संभाजी नगर.
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. सो एमजीएम यूनिवर्सिटीज JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA. हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक बार एक लड़का था, नाम मान लो अर्जुन। अर्जुन नाम ठीक रहेगा, बड़ा सिंपल सा, किसी से कुछ कहता नहीं था, बस अपने काम से मतलब रखता था। लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग थे जिनका काम ही था टांग खींचना। वो अगर सुबह दौड़ने जाता, लोग बोलते नाटक कर रहा है फिटनेस का, नया कुछ पहन लेता, कहाँ से आता है इतना एटीट्यूड, कुछ नया बोल दे तो बोलेंगे दिखावा कर रहा है। अर्जुन चुपचाप सब सुनता। एक दिन थक गया, बोला क्या करूँ, कुछ भी करूँ, लोगों को कुछ ना कुछ तो कहना है होता ही है। कि पापा मुस्कुराए और कहा, बेटा लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनके दिमाग का मुद्दा है, तुम्हारा नहीं। तू अगर हर आवाज पे रुकेगा तो मंजिल कभी नहीं आएगी। इन्हें इग्नोर कर और अपने रास्ते पर चलता रहे। और उस दिन के बाद अर्जुन ने एक चीज सीख ली, जो लोग तुम्हें गिराने की सोच रहे होते हैं ना, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कहानी छोटी थी लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। दूसरों की बातों का शोर मत करो और अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, स्क्रिप्ट भी तुम्हारी है और लिखनी भी तुम्हें है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिएगा और खुश रहिएगा। यही थी आज के किस्सों की कारवा में की कहानी, इग्नोर द पीपल। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: जब भी कुछ अच्छा करने जाओ ना तो कुछ ना कुछ बुराई हमारे साथ आ ही जाती है। तो बात कुछ ऐसी है कि फिलहाल अपने शहर में हेलमेट कंपलसरी हो चुका है, ये हम सभी को पता होगा। म्हणजे हेलमेट सक्ती सुरू आहे, सीट बेल्ट चा वापर करणे सुद्धा सुरू आहे, आणि तुम्ही जर हे रूल्स ब्रेक केले तर तुमच्यावर कारवाई सुद्धा होती आणि तुम्हाला फाईन पे करावा लागतोय। ये सब चीजें तो हम सबको पता ही होगी। तो अब आप घर से बाहर निकल रहे होगे तो हेलमेट यूज कीजिएगा, हेलमेट अपने साथ रखिए, वरना पकड़े जाओगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। हमको लगता है कि अब अपना चलान कट गया, अब हमें फाइन पे करना है, और उसके बाद डिजिटल तरीके से ना तो फाइन हमारे मोबाइल पर आता है, एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक लिंक आती है जिसमें लिखा होता है कि आपका चलान कट चुका है, चलान नंबर होता है, डेट होती है, और उसके आगे एक लिंक होती है, और ये लिंक आपने ओपन किए तो यहीं से गेम पूरा पलट जाता है। मतलब बात कुछ ऐसी है कि मौके पे चौका मारना, ये साइबर फ्रॉड वाले से किसी ने सीखना चाहिए। ई चलान साइबर स्कैम अभी मार्केट में आ गया है, जो कि एक साथ अपने शहर में बहुत सारे लोगों को सेम मैसेज फॉरवर्ड हुआ और उनके साथ तो स्कैम होते होते रह गया, या तो किसी के साथ हो भी गया। तो एग्जैक्टली ये साइबर स्कैम क्या है, जो कि ई चलान के नाम से आजकल अपने शहर के बहुत सारे लोग इसके शिकार हो गए है। तो ये एग्जैक्टली क्या है भाई स्कैम, वो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये पिछले एक दो दिन में आपके मोबाइल पर कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज आया है क्या ई चलान वाला, चेक कीजिएगा। देखिए अभी चेक कीजिए, तब तक मैं भी लौट कर आता हूँ और बताता हूँ कि ये पूरा स्कैम क्या है और किस तरीके से हो रहा है। सो बी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ टाइम से ना तो अपने शहर में हेलमेट सक्ती झालेली आहे आणि सीट बेल्ट वापरणे सुद्धा कंपल्सरी झाले. जे हे रूल्स फॉलो करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई होतीये आणि फाईन सुद्धा त्यांना भरावा लागतोय. आणि हा फाईन आपल्या मोबाईलवर येतो म्हणजे डिजिटली आपण हा फाईन पे करतोय. ये तो हम सभी को पता होगा. लेकिन सायबर फ्रॉड ऐसे चीजों के ऊपर नजर रखते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे शिकार मिल रहा है, तो क्या करते हैं, आपको एक मैसेज सेंड करते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका ई चलान कट चुका है या आपका चलान नंबर है, और उसके आगे डेट लिखी होती है और उसके आगे होती है एक वेबसाइट की लिंक, और इसी के साथ आपके व्हाट्सएप पर ना तो एक .apk फाइल आती है ई चलान के नाम से. अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, अगर ऐसे कुछ मैसेज आपके पास आ रहे हो तो बच के रहिएगा और ऐसे मैसेज को अवॉइड कीजिएगा. और ये जो ई चलान वाले मैसेज आते हैं ना, उसमें आपका नाम लिखा होता है. जो ऑफिशियल मैसेज आते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आपके नाम से कभी भी नहीं आते, उस पे बस आपके गाड़ी का नंबर होता है. तो ये बेसिक चीज याद रखिएगा कि कौन सा ई चलान ओरिजिनल है और कौन सा स्कैम है. और एक बात, चलान स्कैम के मैसेज आए हैं ना तो उसमें एक बात नोटिस की गई है कि सभी का चलान नंबर सेम है और ऐसा होता नहीं है ओरिजिनल चलान में. और इसी के साथ कोई एपीके फाइल है तो उसे अवॉइड कीजिए, डाउनलोड मत कीजिए गलती से भी. गलती से आपने उस पर क्लिक कर दिया तो सबसे पहले अपना डेटा ऑफ कीजिएगा और अपना UPI पिन तुरंत ब्लॉक कीजिए. इतनी बेसिक चीज आपको करना है ताकि आप ऐसे स्कैम से बच के रहे, क्योंकि मौके का फायदा ये स्कैमर उठा रहे हैं और इस वजह से एक साथ ऐसे बहुत सारे लोगों को मैसेज अपने शहर में फॉरवर्ड हुए हैं. तो बच के रहिएगा, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए

0: सर्टिफाइड एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर। और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट डब्ल्यू डब्ल्यू

0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है तो बात है।
1: मोहन और सीमा बचपन के दोस्त थे, दोनों हमेशा एक साथ खेलते थे, हर छोटी छोटी बात पर हंसी ठिठोली करते थे। एक दिन मोहन ने सीमा से कहा, क्या तुम कभी मुझे बिना जाने बिना पूछे अपना हाथ थाम पाओगी? सीमा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मुझसे हमेशा सच बोलोगे तो मुझे कोई शक नहीं होगा। वो दिन आया जब मोहन को पता चला कि उसे सीमा से प्यार हो गया है, लेकिन वो डरता था अपनी दोस्ती खोने से, जैसे आप लोग भी डरते हो ना आपकी दोस्ती खोने से। फिर एक शाम आई जब मोहन ने सीमा को गुलाब का फूल दे दिया और कहा, तुमसे ज़्यादा खास कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सीमा ने गुलाब का फूल लिया और बस इतना कहा, मुझे तुमसे कभी दूर नहीं होना। दोस्ती से शुरू हुआ प्यार अब दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया।
0: अदनासी बात विद आरजे अदनान ओनली ऑन एमजीएम 90.85 साथ है।

नवीन मतदान यादी तुमचं नाव आहे का नाही हे कसं चेक करायचं माहिती आहे? मी सांगतोय ना, बात कुछ ऐसी है कि SIR फॉर्म तो सभी ने फिलअप किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो भाई घबराओ मत, आपका रह गया होगा, तो 24 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, और इसकी डिटेल भी इन्फॉर्मेशन आप आपके नगर सेवक से ले सकते हो। बैक टू टॉपिक, तो अगर जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया है और जो अभी पहली मतदान याद आई है ना, तो उसमें आपका नाम है या नहीं ये आपको चेक करना है, तो कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके मोबाइल पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज में जाना है, यानी कि SMS ओपन कीजिए, वहाँ पर 1950 इस नंबर पर एक मैसेज सेंड करना है। वो मैसेज होगा आपका जो वोटर ID नंबर है वो उसमें ऐड करना है, और वही मैसेज आपको सेंड करना है। उसके बाद सामने से रिप्लाई आएगा जिसमें नया रोल नंबर क्या है आपका और सीरियल नंबर क्या है ये आपको बताया जाएगा। अगर रिप्लाई आ गया, आपका रोल नंबर और सीरियल नंबर आ गया, तो समझ जाइएगा कि आपका नाम नए वोटर लिस्ट में आ चुका है। अगर आपका नाम नहीं आया है तो कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी, या आपका एड्रेस कुछ गलत हो गया होगा, या मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो ये सब आप करेक्ट करके ले सकते हो 24 अक्टूबर के पहले पहले। सो याद रखिएगा, और प्रोसेस बहुत सिंपल है चेक करने के लिए, बस 1950 इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करना है आपका EPIC नंबर, यानी कि मतदान ओळख पत्र क्रमांक। सो लक्षात ठेवा आणि चेक करा की तुमचं नाव आहे लिस्ट मध्ये की नाही, आणि ऐकत रहा ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

स्मार्ट सिटी बसेस अपने शहर की लाइफलाइन है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट वही लाइफलाइन अगर सलाइन पर चल रही हो तो कैसा होगा भाई। तो बात कुछ ऐसी है जनाब की एक रिपोर्ट में ऐसा आया है, अपने शहर में तकरीबन 100 स्मार्ट सिटी बसेस है और जिसमें से 30% स्मार्ट सिटी बसेस बंद है, यानी कि उनका मेंटेनेंस वक्त पर हुआ नहीं और बचे कुचे बस के जरिए पूरे शहर की लाइफलाइन चल रही है। अब देखो बात ये आती है कि यार हमारे पास, हम सब कुछ स्मार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस करना ये दूर दूर तो कहीं दिखाई नहीं देता। और तकरीबन हर महीने 2 करोड़ से ज्यादा इनकम ये स्मार्ट सिटी बसेस करती है और इससे ज्यादा खर्चा इसके मेंटेनेंस के लिए लग रहा है। अब अपने शहर में सुना है इलेक्ट्रिक बसेस भी आने वाली, 35 बसेस शहर में आने वाली, तो एक ही दरख्वास्त है प्रशासन से, भाई जो बसेस नहीं आ रही है ना तो उनका तो भी वक्त पर मेंटेनेंस किया करो, वरना नई नवीली दुल्हन जैसे 9 दिवस तुम्हें करताल और त्यानंतर परिस्थिति जैसे थे हो जाएगी और उसके बाद जो नई चीजें है वो भी 1 साल के बाद पुरानी हमें नजर आएगी। हालांकि इतनी जल्दी पुरानी नहीं होनी चाहिए, बट जिस तरीके से आप इसका ख्याल रखते हो तो होने तो वाला ही ऐसा लग रहा है। बिकॉज इतने अच्छे स्मार्ट सिटी बसेस है अपने शहर में, हमने भी अगर देखा होगा ना तो समझ में आता है भाई क्या हाल हो गया इनका, सब खट खट खटारा हो चुके हैं। पर करे तो करे क्या, स्मार्ट सिटी बस कागज पर हमें नहीं बनानी है, असल मायने में हमें अपना शहर स्मार्ट बनाना है। देखते हैं कब तक ये मेंटेनेंस का काम कंप्लीट होगा और सारे बसेस हमें शहर के रास्तों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो

0: लाइफ पार्टनर चाहिए या रियल पार्टनर, यही समझ में नहीं आ रहा आजकल तो। बात कुछ ऐसी है कि लग्नाच्या जाहिराती आपण बघितल्या असतील, मुलगा किंवा मुलगी सुंदर सुशिक्षित संस्कारी पाहिजे असं आपण अनेकदा ऐकलं होतं। आता एक नवीन रिक्वायरमेंट आली आहे की नवरा कसा पाहिजे, सोबत रील बनवणारा आणि एडिट करून देणारा। क्या बात है यार, मतलब इन्फ्लुएन्सर को तो इन्फ्लुएन्सरी चाहिए भाई। आणि आता काळ बदलतोय, त्यामुळं पूर्वी मुलगी म्हणायची की माझा नवरा मला समजून घेणारा हवा, आता म्हणते की माझा नवरा कॉन्टेंटला समजून घेणारा असावा। क्या बात है यार, मतलब आप कंटेंट क्रिएटर ही चूज कर रहे हो। म्हणजे लग्न झाल्यावर नवरा म्हणणार चल आज कुठे फिरायला जाऊया, आणि बायको म्हणणार फिरायला नंतर जाऊ, आधी 3 रील शूट करू आणि फिरण्याची प्लॅनिंग तयार करू, त्याचा व्लॉग तयार करू। सो ये एक ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट व्हायरल हो रहा था जिसमें ये सब बातें आई थी की एक लड़की है जिसको नवरोबा पाहिजे तो रील बनवणारा आणि एडिट करून देणारा पाहिजे। क्या बात है यार, एक वक्त था जब लड़के के पास जमीन जायदाद घर बैंक बैलेंस नौकरी ये सब देखा जाता था। आप क्या देखते हैं कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए और उसको एडिटिंग आनी चाहिए। खैर अगर ऐसा है तो भाई इस जन्म में तो मेरे जैसे लड़के सिंगल ही मरने वाले। खैर क्या ही बोले, वैसे आपका कोई दोस्त होगा जो रील बनाता है या एडिट करता है तो उस तक ही आप रिश्ता पहुंचा सकते हो, क्या पता उसका भला हो जाए। खैर अपना क्या, सिंगलपन जिंदाबाद। स्टे ट्यून
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ